0: the radio, web, and mobile app.
1: Metro Plus.
0: Metro Plus, your connect.
1: Your connect.
2: Feel drowsy and slow after taking drugs? Then don't drive, or the consequences might be grave. The new law against drug driving is now in effect. The police may require drivers to undergo preliminary drug tests and provide blood and urine specimens. Driving under the influence of any drug is an offence. Always seek advice from healthcare professionals if you are not sure whether the drug you take may impair driving.
3: It's my
0: Metro Plus AM 1044 presents John Bon Jovi on Life.
4: Life is for the living. You have to make the most of it.
0: On Family.
4: Live your life with your family, with your friends, with your music. But always live your life without drugs. Because living your life with drugs means you have no life at all.
0: Life with drugs. No life at all.
5: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.
6: Namaste, Sasri Akal, Salam, Kidda Unji, Sare Vadiya, Paji, Bohut Vadiya. Aja Ji, 28 August 2026. Shuru Karte Ji, Hamara Show with our first announcement. Aja Hamare Paas Kuch 6 announcement Hai. To Fata Fat announcement Karte Hai Khatam, Thik Hai. तो पहला अनाउंसमेंट है दिस इज एडमिशन अरेंजमेंट्स फॉर नर्सरी क्लासेस इन किंडरगार्टन्स फॉर द 2027 एंड 28 स्कूल ईयर. गवर्नमेंट ने 2017-18 स्कूल ईयर से किंडरगार्टन एजुकेशन स्कीम शुरू किया है. इस स्कीम में ज्वाइन किए हुए किंडरगार्टन सिर्फ उन बच्चों को एडमिट करते हैं जिनके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर किंडरगार्टन एडमिशन या किंडरगार्टन एडमिशन पास. अगर आप अपने बच्चे को 2027-28 स्कूल ईयर के लिए स्कीम के जिन में नर्सरी क्लास में डालना चाहते हो तो सितंबर से नवंबर 2026 के बीच एजुकेशन ब्यूरो से इलेक्ट्रॉनिक आरसी या एपी के लिए अप्लाई कर सकते हो. अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं वो पेरेंट्स जिनका बच्चा हांगकांग रेजिडेंट है, 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले पैदा हुआ हो और 2027-28 में K1 क्लास ज्वाइन किया हो. एप्लीकेशन ऑनलाइन आई एम स्मार्ट ऐप या EDB वेबसाइट से कर सकते हैं. हार्ड कॉपी फॉर्म और गाइडेंस नोट्स EDB वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या होम अफेयर्स डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से भी ले सकते हैं. कोई सवाल हो तो ऑफिस आवर्स में EDB के किंडरगार्टन एडमिनिस्ट्रेशन 2 सेक्शन से कांटेक्ट कीजिए 3540-6808 या फिर 3540-6811. ओके, पढ़ते हैं अगले अनाउंसमेंट पर. दिस इज ब्रेस्ट अवेयरनेस एंड ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन. हांगकांग में महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर. हर महिला को अपने ब्रेस्ट्स के नॉर्मल लुक और फील के बारे में पता होना चाहिए. हमेशा ब्रेस्ट अवेयर रहे. कोई भी अनयूजुअल चेंज दिखे तो तुरंत ध्यान दें, जैसे ब्रेस्ट में लंप, साइज या शेप में फर्क, निप्पल अंदर की तरफ खींच जाना, स्किन का टेक्सचर बदल जाना. अगर ऐसा कुछ लगे तो जल्दी डॉक्टर से मिलो. जल्दी पकड़ने से जिंदगी बच सकती है. प्रिवेंशन के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, रेगुलर एक्सरसाइज करो, हेल्दी वेट और वेस्ट रखो, अल्कोहल बिल्कुल छोड़ दो. ज़्यादा जानकारी के लिए www.cancer.gov.hk/breastcancer पे जा सकते हैं. अपना ख्याल रखें. ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले अनाउंसमेंट पर. दिस इज एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट. क्या आप जॉब ढूंढ रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहां से मदद और सलाह मिलेगी? लेबर डिपार्टमेंट ने पूरे हांगकांग में 10 जॉब सेंटर्स खोले हैं. यहां जॉब सीकर्स को बिल्कुल फ्री मदद मिलती है. किसी भी जॉब सेंटर में जाकर आपको लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. वहां एम्प्लॉयमेंट एडवाइज़र से बात कर सकते हैं, अपनी जॉब की ज़रूरतों के बारे में डिस्कस करें और उनके स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ज्वाइन करें जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं. खासकर एथनिक माइनॉरिटी जॉब सीकर्स के लिए रेशियल